0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: जापान के वजीर दिफा ने कहा है कि यूरोप के बास ममालिक की जानब से जौहरी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने की कोशिशों के पेश नज़र टोक्यो को भी जौहरी हथियारों के मामले पर कौमी सतह पर बहस की जरूरत है। रोजनामा क्योटो न्यूज के मुताबिक वजीर दिफा शिंजिरो कियोज़ुमी ने इतवार के रोज एक ऑनलाइन प्रोग्राम में कहा है कि जापान अब इस मौजू पर बात करने से गुरेज नहीं कर सकता। कियोज़ुमी ने कहा है कि जापान की सलामती की सूरत हाल पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त हो चुकी है और टोक्यो को बास मौजूद पर बहस के नाकाबिल ले कबूल होने की सोच से निकलना होगा। अपने मौकफ की हिमायत में उन्होंने फ्रांस और फिनलैंड की जानब से अपनी जौहरी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए इख्तियार करदा हिकमत अमली का भी हवाला दिया है। वाज़ह रहे कि फिनलैंड के पार्लियामेंट ने जून में एक ऐसा बिल मंजूर किया था जिसके तहत मुल्क में जौहरी हथियार लाने की इजाजत दी जा सकती है और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने मार्च में ऐलान किया था कि इनका मुल्क अपने जौहरी वारहेड्स की तादाद में इजाफा करेगा। यूक्रेन की सरकारी हंगामी खिदमत ने आज बरोज इतवार जारी करदा बयान में कहा है कि रात भर दारुल हुकूमत केव पर रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमलों के नतीजे में केव के मुख्तलिफ इलाकों में मुतद्दद मुकामात पर आग भड़क उठी, शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, गैर रिहायशी इमारतें मुतासर हुई और खुले इलाके में मलबा बिखर गया। सरकारी फेसबुक पोस्ट के मुताबिक इमदादी टीमें जाए वकुआ पर आग बुझाने और मलबा हटाने की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। एक और ड्रोन हमले में जनूब मशरकी इलाके ज़ापोरिजिया में एक मुसाफर ट्रेन भी निशाना बनी है। ज़ापोरिजिया के गवर्नर इवान फेडोरोव ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में इस हमले में एक शख्स के जख्मी होने की तस्दीक की है। दूसरी जानब यूक्रेन फजाइया ने कहा है कि इसने रात भर के हमलों के दौरान 18 मिसाइल और 108 ड्रोन मार गिराए या नाकारा कर दिए हैं। इधर रूस के शुमाली इलाके स्टावरोपोल में भी रात के हमलों के बाद एक सन्नती तनसीब में आग लग गई। गवर्नर व्लादिमीर देमूरोफ ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि इसकी ये हमला दुरुस्त था। व्लादिमीर देव ने कहा है कि ये तनसीब रिहायशी इलाकों से काफ़ी दूर वाक़ है और करीबी रिहायशी इलाकों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। रूस वजारत दिफा ने कीव पर हमले की तस्दीक की और कहा है कि इसकी अफवाज ने दारुल हुकूमत और इसके नवाह में वाक़ फौजी और सन्नती तनसीबात, लॉजिस्टिक मराकज़ और बहरा असवद के साहली इलाके ओडिशा के यूज़हनी बंदरगाह के इस बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसे रूस के मुताबिक फौजी साजो सामान के जखीरे और तरसील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हंगरी के सदर ने अपने ओहदे की मुद्दत के खात्मे से मुतल्लिका कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। हंगरी के सदर तामाश शोयोक ने मुल्क में जारी बड़े सियासी बहरान के दौरान एक आईनी तरमीम पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत इनकी अपनी सदारती मुद्दत मुलाजमत फौरी तौर पर खत्म हो गई है। वजीर आजम पीटर माग्यार की ज़ेर क़यादत बरसरे इक़्तदार जमात की जानब से मंजूर किए गए इस कानून का मकसद साबिक रहनुमा विक्टर ओरबान के कायम करदा हुकूमती ढांचे को ख़त्म करना है। तरमीम में इस बात का हवाला दिया गया है कि सदर जिन्हें असल में ओरबान के इत्तेहादियों ने मुंतखब किया था अब एतमाद के संगीन फुकदान का सामना कर रहे हैं। शोयोक ने कानून पर दस्तखत करते हुए खबरदार किया है कि यह इकदाम कानून की बालादस्ती पर एक शदीद ज़र्ब है। इस जामे आईनी तरमीम के तहत अरकान पार्लियामेंट के लिए मुद्दत मुलाजमत की हद मुकर्रर की गई और हंगरी के अटॉर्नी जनरल को भी इनके ओहदे से हटा दिया गया है। तुर्क तैराक ने आर्कटिक के इलाके में 1200 मीटर तैराकी मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी है। 38 साल तुर्क तैराक देनिस कायादिलैन नार्वे के इलाके स्वालबार्ड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में 1200 मीटर तैराकी मुकम्मल करके इस इलाके में तैरने वाली पहली तुर्क तैराक बन गई हैं। 6 दफ़ा आलमी चैंपियन और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल कायादिलैन ने ये रिकॉर्ड अपनी 10 माह की बेटी के साथ सियाहत के दौरान कायम किया है। इस कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कायादिलैन ने कहा है कि मैंने फ़खर से तुर्की का परचम लहराया है और मुझे उम्मीद है कि ये तारीखी कामयाबी पूरी दुनिया की औरतों के लिए इल्हाम बनेगी। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। डेक्लन राइस ने मैच के तीसरे मिनट में पहला गोल किया और एजरिन कोंसा ने 18वें मिनट में दूसरा गोल स्कोर किया। बोका योसाका ने पहले हाफ के 37वें मिनट और इंजरी टाइम में 2 गोल करके 3 लाइन्स के नाम से मारूफ इंग्लैंड को 0-4 की बढ़तरी दिलाई। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियान एम्बापे ने दूसरे हाफ में 48वें और 66वें मिनट में 2 गोल किए और ब्लेडली बारकोला ने 54वें मिनट में फ्रांस का तीसरा गोल स्कोर किया। साका ने 87वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। इंजरी टाइम में उस्मान डेम्बेले ने फ्रांस का चौथा और आखिरी गोल किया और मैच के आखिरी लम्हात में जोट बेंगकम ने इंग्लैंड का छठा और आखिरी गोल कर दिया। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं तान्र इस्तेमेस से और गाया है एजता पेकान ने।

आज दुनिया के बहुत से जदीद शहर आसमां को छूती अपनी देव है कल इमारतों, रोशन खिड़कियों, सड़कों और पुरहुजूम चौकों पर फख्र करते हैं। लेकिन अरिहा हमें खामोशी से याद दिलाता है कि एक शहर होने का हकीकी मतलब क्या है। शहर बनना सिर्फ पत्थर और कंक्रीट से बड़ी इमारतें खड़ी करना नहीं है। शहर बनना ये है कि इंसान एक ही मिट्टी के टुकड़े पर नस्लों तक शाना बशाना रहने में कामयाब हों और एक मुश्तरका तारीख व हाफिज़ा तामीर करें। और अरिहा का हाफिज़ा इंसानियत का कदीम तरीन और जड़दार हाफिज़ा है। अगली किस्त में पत्थर हमें एक अलग कहानी सुनाएगा, उस बात की कहानी कि इंसान दुनिया को किस नज़र से देखता था और सरहदें कैसे खींची गई थीं। हम पुराने नक्शों के निशानात तलाश करेंगे और बात करेंगे कि एक चर्च के फर्श पर मौजूद मोज़ाइक तारीख की किताबों जितना अहम क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव है फलस्तीन का पहला नक्शा और खुफिया मोज़ाइक। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।